लेबर डिपार्टमेंट 16 और 17 सितंबर को बैंकॉक के मैकफर्सन स्टेडियम में दो रोजा लार्ज स्केल जॉब फेयर बिल्डिंग अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस जॉब फेयर के नाम से मुनक्किद करेगा। मुख्तलिफ सनअतों से ताल्लुक रखने वाले लगभग 50 एम्प्लॉयर्स मुतअद्दिद अक़साम की मुलाजमतों के मौके पेश करेंगे। तकरीब के दौरान एम्प्लॉयर्स इन आसामियों को नुमाइश के जरिए मुतारिफ कराएंगे, मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद से बातचीत करेंगे और मौके पर ही दरख्वास्तें वसूल करेंगे। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस जॉब फेयर में शिरकत का मौका जरूर हासिल करें, जो सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। शिरकत करने वाले इदारों और दस्तियाब आसामियों की तफसीलात के लिए बराए करम मुलाहिजा कीजिए www.jobs.gov.hk। उन्हीं दिनों नसीम बेगम ने वतन पर जान निछावर कर देने वालों को खराज-ए-अकीदत यूं पेश किया।

0: पाकिस्तान दिल।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जमशेद और आप सुन रहे हैं हांगकांग की शान।
2: दोस्तों, पाक फजाइया के जिन सरफरोशों ने जान की बाजी लगाकर अपने वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, उनमें एक नुमाया नाम स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी का है। आपने दुश्मन के हवाई अड्डों को तहस नहस किया और इसी दौरान में अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। उनकी अहलिया शहनाज आलम ने पाक फजाइया के शाहिनों को मंजूम खराज तहसीन पेश किया। पहले सुनिए उनकी ये मुकम्मल नज्म तहतुल लफ्ज में, उसके बाद इसके कुछ बंद जिन्हें शहनाज साहिबा ने खुद गाया और उसकी धुन भी खुद ही तरतीब दी।
3: वतन की पाक फजाओं के पास तुम हो,
2: वतन की पाक फजाओं के पासबां तुम हो, दिलों की धड़कने भी और रूह जान तुम हो। तुम्हारे अज़्म से है पाक सरहदों को सबात, यकीन मोहकमों हिम्मत की दास्तां तुम हो। तुम्हारा जज्बे परवाज है हमारी असास, तमाम कौम के लालो गुहर हो जहां तुम हो। न मालो जर की तमन्ना न शोहरतों से गरज, चमकते चांद सितारों के राजदां तुम हो। तुम्हारे खून से रोशन हुई है सुबह वतन, इस अर्दे पाक के गोशों में जौफिशां तुम हो। मेरी दुआ है कि लग जाए उम्र तुमको मेरी, दयारे पाक में एक हरफे जाविदां तुम हो। वतन की पाक फजाओं के पासबां तुम हो, दिलों की धड़कने भी और

0: हांगकांग की शाम आप सुन रहे हैं आरटीएचके रेडियो 3 पर।
1: 1965 की जंग सितंबर के मकबूल तरीन नगमों में से एक वो है जिसे मैशर बदायूनी ने लिखा और ताज मुल्तानी और साथियों ने पुरजोश अंदाज में गाकर सारी कौम का लहू गरमाया।

हांगकांग में खवातीन में सर्वाइकल कैंसर आम पाया जाता है। बाकायदा स्क्रीनिंग इस बीमारी से बचाव का मौसर तरीका है। अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के दरमियान है और आप अज़दवाजी या जिनसी ताल्लुक तजर्बा रखती हैं तो आपको बाकायदगी से स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। बहुत सी खवातीन जिन्हें HPV वायरस लाहक हो जो सर्वाइकल कैंसर का सबब बनता है या जिनमें इस बीमारी के इब्तदाई आसार मौजूद हों उन्हें किसी किस्म की अलामत महसूस नहीं होती। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि चाहे आपको कोई अलामत ना हो, चाहे आप वैक्सीन लगवा चुकी हों या आप मेनोपॉज में हों, फिर भी आपके लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है। अपनी स्क्रीनिंग का वक्त मुकर्रर करने के लिए महकमे सेहत के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर कमीशन के वीमेन वेलनेस सेटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या NGO से रब्ता करें। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए फ़ोन करें 6631-3166। मजीद ये कि वीमेन वेलनेस सेटेलाइट्स ने जनवरी 2026 से HPV का सेल्फ सैम्पलिंग यानी खुद नमूना लेने की सहूलत भी शुरू कर दी है। मजीद मालूमात या तरीक़ाकार जानने के लिए तीन में से किसी भी वेलनेस सेटेलाइट से रब्ता करें। हांगकांग आइलैंड फ़ोन नंबर 2855-1333, कोलून 2855-1222, न्यू टेरिटरीज 2851-1722। और अब सितंबर 1965 के चंद यादगार नगमों की झलक।

लेबर डिपार्टमेंट 17 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चुनवान जॉब सेंटर में नस्ली अकलियतों के लिए एक इंक्लूसिव जॉब फेयर का इनेकाद करेगा। 3 एम्प्लॉयर जिनमें शंग्रीला होटल कोलून लिमिटेड, CCG प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड और द सर्विस हांगकॉन्ग लिमिटेड वगैरह शामिल हैं, 100 से ज्यादा मुख्तलिफ असामियां पेश करेंगे, जिनमें ऑन साइट टेक्नीशियन, कस्टमर सर्विस एम्बेसडर, असिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफिसर, क्लीनर, बिल्डिंग अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, सर्विस सेंटर ऑफिसर, कंसर्ज असिस्टेंट, वैले पार्किंग अटेंडेंट, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर, रूम अटेंडेंट, यूनिफॉर्म एंड लिनन अटेंडेंट, होस्ट हॉस्टेस, स्टीवर्ड क्लीनर और कॉमीज वगैरह शामिल हैं। ज्यादातर आसामियों के लिए महज थोड़ी बहुत चाइनीज जानना जरूरी है। एम्प्लॉयर्स मौके पर ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू करेंगे, जहाँ मुफ्त तर्जुमान की सहूलत भी मैसर होगी। इस इवेंट के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। एथनिक माइनॉरिटी के जॉब सीकर्स को खुश आमदीद कहा जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए देखिए www.jobs.gov.hk। सामिन, सितंबर के महीने का आगाज हो चुका। हमें इस मौके पर याद आता है 1961 की मशहूर इंग्लिश फिल्म कम सितंबर और उसका टाइटल सॉन्ग। ये टाइटल सॉन्ग इतना मकबूल हुआ था कि उन दिनों रेडियो पाकिस्तान से हिट परेड के नाम से हफ्ता भर के मकबूल तरीन गीतों का जो प्रोग्राम नशर होता था, ये म्यूजिक कई हफ्तों तक उसमें पहले नंबर पर रहा। इस पर कई ममालिक में गीत बने। पाकिस्तान में नाहिद नियाजी ने गीत गाया, जिसे हिमायत अली शायद ने लिखा था और इसकी धुन मुस्लिउद्दीन ने बनाई थी। सुनिए उसकी ये झलक। कम सितंबर का ओरिजिनल म्यूजिक हम आपको प्रोग्राम के आखिर में सुनवाएंगे।

अगर कोई बच्चा 31 दिसंबर 2021 या इससे पहले पैदा हुआ है और वह सितंबर 2027 में किसी सरकारी या मदद याफ्ता प्राइमरी स्कूल में पहली जमात में दाखिला लेना चाहता है तो वह प्राइमरी वन एडमिशन 2027 में हिस्सा ले सकता है जो इस साल सितंबर में शुरू होगा। दरखास्त फॉर्म पुर करने से मुतालिक वजाती नोट्स और मालूमाती पंफलेट 1 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक दस्तियाब होंगे। वालदेन अपने बच्चे के जेर तालीम किंडरगार्टन या किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर से दरख्वास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। ये फॉर्म जिले दफातर के होम अफेयर्स इंक्वायरी सेंटर्स, रीजनल एजुकेशन दफातर और एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस अलॉटमेंट सेक्शन प्राइमरी वन एडमिशन से भी हासिल किए जा सकते हैं। वालदेन मुख्तलिफ जबानों में प्राइमरी वन एडमिशन की मालूमाती नोट एजुकेशन ब्यूरो की POA वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल शुदा दरख्वास्त फॉर्म और तमाम मतलूबा दस्तावेजात वालदेन की पसंद के किसी एक सरकारी या मदद याफ्ता प्राइमरी स्कूल में स्कूल के दफ्तरी औकात में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक बराह राज जमा करवानी होंगी। जो वालदेन प्राइमरी वन एडमिशन ई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और अपने अकाउंट को आई एम स्मार्ट प्लस से मुंसलिक कर चुके हैं वो अपनी दरख्वास्त 17 सितंबर से 25 सितंबर तक ई प्लेटफॉर्म के जरिए जमा करा सकते हैं। वालदेन को चाहिए कि वो एजुकेशन ब्यूरो की ताज़ा तरीन प्रेस रिलीजेज और POA वेबसाइट पर दी गई इत्तला से बाखबर रहें। प्राइमरी वन एडमिशन सिस्टम से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए वालदेन एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस अलॉटमेंट सेक्शन से फोन 2832770 पर राबता कर सकते हैं।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अदील बरकी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मनचाहे मेजबान आबिद अली बेग के साथ।